0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हंड
1: विलाव सावसतोनाय
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: दोतराये पेरलिकरण एनएलबी मेगा पाव तेवंत मेगा सुपर टैग गट अमतरव रुपियाल कोटिये का पाव सुपर टैग सहा ग्रैंड सुपर टैग गट सुपर रिमोट रत्या एनएलबी

देर अंडर दे मुदो मामे आम किसी दया गायना करना उगलने खराने पीने के रिपीट करने को इतना पुलू आंदो मैं साथ दे मादी मैं पत्ते हो पिटी बसे है ओए दिएन ने ते मां की आने में एक चलाए यू सिंग ना ना ना ना ना ना ना ना लेसी ने दा Yeah. Let's see the... Ready? One.